0: क्या नहीं करते रहे।
1: करता तेरा सब कुछ है जिसने सो पावे।
0: सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन बिसावे।
1: नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे।
0: कह नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रहे।
1: सच्चा नाम मेरा आधारो।
0: सच नाम दार मेरा जिन भुखा सब गवाइया।
1: कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।
0: सदा कुर्बान की दा गुरु बेटो जिस दिया बढ़िया।
1: कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो।
0: सच्चा सचा नाम मेरा आधार। भाजी पंच शब्द कर पागे शब्द भाजी कलाजित कर तारिया।
1: पंच दूत वास कीते काल कंटक मारिया।
0: कर्म पाया तुझन को से नाम हर के लागे।
1: कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे।
0: साची लेवे बिन देन मानी लेवे बाजो क्या करे विचारिया।
1: तुद वास मृत कोई नाही कृपा कर बनवारिया।
0: इस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया।
1: कह नानक लेवे बाजू क्या करे बेचारिया। आनंद
0: अनंत आनंद सबको कहना गुरु ते जानिया।
1: जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
0: हर कृपा के लिए कटे ज्ञान अंजन सारिया।
1: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया।
0: कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया।
1: कह नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। बाबा
0: बाबा जिस तू दे सोजन पावे।
1: पावे ता सोजन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया।
0: परम पुले फिरा दा दिस एक नाम लाग सवारिया।
1: गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे।
0: कह नानक जिस ते प्यारे सोई जन पावे।
1: आवो संत प्यारे हो कथ की करह कहानी।

सतगुर पाया। जीव पोते जन्म प्रमया दा सतगुर सब सुनाया। सतगुर जेवर दाता को नहीं सब सुन हो लोक सभाया। सतगुर मिलया सच पाया जिन विच हो आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।

बिन समझ न आवै, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अग्नि कट

इस जग में पुरखी कहै और सगली नार सोबाई, सब कट भोग वै लुप्त रह लखना लखना जाई, पूरे गुरवे खालिया शब्द सोजी पाई, पुरखै से वैसे पुरख हो वै जनी हो मैं शब्द जलाई, तिसका श्री को नहीं ना को कटंक वैराई, निश्चल राज है सदा तिसकेरा ना आवै ना जाई, आन दिन सेवक सेवा करे अर सच्चे के गुण गाई, नानक वेख विकसे अर सच्चे की वडियाई, पौड़ी जिन कै हर नाम बसया सद हिरदै।

सब लोहे आपे सुध आपे बमणिया कर शक्ति जगत परोए आपे सुतार प्यारा सुत किंचा टेहरी होए मेरे मन हर ना हा मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोई सतगुरु विच नाम निदान है प्यारा कर दया अमृत मुख जोए रहा हो आपे।

हर बिन रहन न जाई, जो मछली बिन नी रह बिन सहत्यो ना मैं बिन मर जाई। मेरे प्रभ कृपा जल दे बोहर नाई, ओ अंतर ना मंगा दिन राती ना में ईशंद पाई रह। आओ ज्यो चातक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास न जाई। गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सो पाई। मन मुख भूके दै दस डोलै, बिना वै दुख पाए। जन मरै फिर जो नी आवै, दरगाह मलै सजाई। कृपा करे तो हर गुण गावै, रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल भया, तृष्णा शब्द बुझाई। सोठ मल्ला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई। सिद्धि ते बद पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर दा भरम कटिया जाई। भरम कटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को दे वडाई। गुरमत नाम नाम प्रगासो, सदा रहो सरनाई राओ। ये संसार सब आवन जाना, मन मूर्ख चेत जाना। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, तार नाम समाणा। जिसकी वत सोई प्रभ जाने, जिसनु दे सुपाए। वस्था नु पत अगम अगोचर पूरा लख लखाए। जिन्हें चाखी सोई जाने, गूंगे की मठियाई। रतन लुकाया लुके नाई, जिको रखे लुकाई। सब किस तेरा तू मंत्र जामी, तू सबना का प्रभ सोई। जिसनु दात करे सो पाए, जे नानक वरना कोई। सो टमाला पंजवा घर पहला, ते तुके कुंकार। सतगुर प्रसाद किसो जाची किस राधी, जा सब किस कीता हो सी। जो जो दिसया वड़ा वडेरा, सो सोखा कुरल सी। निरपुण निरंकार भाव खंडन, सब सुख नाम निदेसी। अर्जियो तेरी दाती, राजा मान सबपड़ा क्या सलाई। क्या तिसका मोहता जा रहा, जिन अर्थ आया सब किस तिसका। तिसी की भूख गवाई, ऐसा तन दिया सुखदा तेने खुट न कब ही जाई। अंत पया सुख सह समाण, सतगुरु मेल मिलाई। मन नाम जप नाम रद, अंत नाम खाणी। उपदेश सुन साध संतन का, सब चुकी कान जमाणी। जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे और की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू कर सर्व जिया दे। अल्लाह सब किस कीता तेरा, वरते क्या हम बाल गोपाला। राख लियो नानक जन तुम रख ज्यो, पिता पूत कृपाला। सोठ माला पंजवा घर पहला, चौथुके गुर गोबिंद सलाई है पाई। मंतन हृदय धारो, सचा शब्द मन वसै पाई है। हकरनी सार जित तन, नाम ना उपजै पाई। सितन हुए होए शार, साध संगत कौवार पाई। जिन एक अंकार आधार, सोई सच रदना पाई। दे सब किश होई, गुरपुरै जान आया पाई। तिसमें वर्ण कोई राओ, ना वे हूणे पचमुए भाई। गणत न जाए गणी, बिन सच सोच न पाई है भाई। सच आगम तणी, आवन जान न चूके भाई। झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार द पाई। दे नावे कणी, शिमरत सास्त बेसोध्य पाई। बिन सतगुर भरम न जाए, अनक जन्म अनक कर्म करता वकिया भाई। फिर फिर बंधन पाए, चारे कुंडा सोधिया पाई। बिन सतगुर नाह जाए, वडपागी गुर पाया पाई। अर नाम ते आए, सच सदाए निर्मल पाई। निर्मल सच्चा सोई, नदर करे जिस अपनी पाई। जिस प्राप्त हुए गोट मदे जन पाया पाई। विरला कोई कोय, नानक रत्ता सच नाए पाई। सुन मंत्र निर्मल हुए, सोठ माला पंजवा दो तुके तो।

दिन सतगुरु आप गुवाए, सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम ते आई रहाओ। जो मांगै सो लेवै, प्रभ अपने संतां देवै। हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साथ सुखाखिया। सोरठ महला पंजवा।

पाछे अणत प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतू नाई साचे साहिब सिंह मन मनिया हर सर्व निरंजन सर्व निरंतर जाने रहाव सब जी तेरे दे आला अपने भगत करे।

कंठ लाए प्रभु राखे सतगुरु की सत साखे गुरु पूरे पूरी कीती दुश्मन मार भी डारे सगले दास को सुमत दीती कहा प्रभु सगले धान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रभु शरण आए जिन सगले रोग मिटाए सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरु तक की शरणी पाई है दर्शन पेट तो होता।

जय जयकार हो जगन पितर, शब्द गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी उट गुसाई, तू समर्थ शरण का दाता, आठ पैर तुम ते आई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, तिसे अंदेसा नाहे, सतगुरु चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाय मन माहे। सुख सहज नंद कनेरे सतगुरु दियां।

कर्ण करामण हारे प्रभु जी हो खसमा न कर प्यारे बुरे पल हम थारे रहाव सुनी पुकार सुमरा स्वामी बंधन काट सुवारे पैर सिर पाओ सेवक जन मेले।

संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निध, पूर्ण खसम हमारे रहाओ। आओ बैठे अधर सब थाई उन्नक।

अटल पै त्रू जा कह सिमरण अर निरपय पद पाया दुख हरता बिद को स्वामी तय काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निधि गज कराते छूटा मेहमान नाम बकहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमुख मै निस्तार नानी कैद चे चिंता मन तभी उतरे पारा सोरठ महला नावा प्राणी कौन उपाव करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ कौन करम विद्या को कैसे धर्म कौन फुण करे कौन नाम गुरु जाके सिमरे भव सागर को तरे कल मैं एक नाम कृपा निधि जाहे जपे गत पावे और धर्म ताके समनाहिन एह विद भेद बतावे सुख दुख रहत सार निरले पी जाको कैद गुसाए सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई

सगल जगत अपने सुख लागे दुख मैं संगना होई रहा। दारा मीत पुत्र सुन पुत सुन बंदी सगरे तन सो लागे जब ही निर्दन देखो नर को संग छाड़ सब।

बंधन डोत खड़कर्मा रथ रहता हों कर बंधन में फिर न मिले ए जुगता जोग सिद्धिया संचो राशि ये भी कर करे आवड़ी आर जा फिर जन में हर कुछ संग न गए राज लीला राजन की रचना करे हुकुम पार से सोनी चंदन चोआ नरकूर का द्वार हर कीर्त सा संगत सिर कर्मन के कर्मा कौन किस भय प्राप जिस प्रोड़ी के कालैना तेरो सेव के रंग माता पै कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन मन रात रहा दूजा राग सोठवार महल्ले चौथे की ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला पहला सोठ सा सुहावनी जे मन सच्चा होए दंदी मैल न कत मन जीबे सच्चा सोए सुसरे पै पैवसे सतगुरु सेव ने संग कपर हरे कपड़ जय पीर मिले खुशी राव पिर संग सदा सिंगारी नमन कद न मैल पतंग देवर जेठ मुए दुख ससु का डर कैस जे फिर भावे नानका करमणि सब सच महला चौथा सोठ ताम सुहाम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुर अव गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर अति हर रंग चोले हर जैसा ब्रुखन लभे सब देखे जगत मटोले गुरु सतगुरु नाम दृढ़ाया बणंत न कहूं डोले जन नानक कर का दास।

संदीप सिंह, हरलीन कौर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नाउ यू नीड टू रिलैक्स। इट वॉज अ स्ट्रेस्ड हो जाती है ना सम टाइम, सवेरे सवेरे बहुत कुछ एक्साइटमेंट मिक्स जी फीलिंग हो जाती इतने आके, बट नाउ इज टाइम टू रिलैक्स। देर इज नो एंटिटी बिटवीन यू एंड गुरु साहब जी। गुरु नानक जी सैट ऑन थ्रोन, दे विल गिव यू द गुड एनर्जी, जिन्हों आप कहने महाराज का आशीर्वाद। ये एनर्जी वो लाइफ ले आन, ये दिन वापस नहीं आना। देखो किन्ने सारे वाहगुरु जी की जोत बैठे है, इन्ह सारिया ने तुहाडे ते फोकस करके तुहानू एनर्जी देनी है, गुड एनर्जी। इनू महाराज कहिंदे आ कि दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तां आणे रास। वाहगुरु जी तुहानू चंगा लगे तो साडी झोली दे विच सच्चे पातशाह दात पा दो नाम की, गुड एनर्जी की। अच्छा हुण आपां आनंद कारज शुरू करना। एज वी डिस्कस इन मीटिंग, द आनंद कारज स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज जिहड़ा मैं हुण शब्द कहिंदा सी इह मैं अपने लिए चूज कीता सी वी किहड़ा अरदास करनी आ। हुण मैं शब्दां च चेंज नहीं कर सकदा क्योंकि इह पंथ ने फिक्स कर दित्ते कोड ऑफ कंडक्ट दे विच, ते पहला शब्द आ कीता लोड़िए कम सुहर पै आखी है, कारज दे सवार सतगुर सत साखी है, संतां संग निधान अमृत चाखी है, भै पंजन मेहरवान दास की राखी है, नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी। छोटा जा शब्द आ बट ये तुहाडी वर्डिंग आ गुरु साहब जी नूं, जिदा ना बाद दे विच कोर्ट मैरिज होनी है ना, उन्होंने एक पेज देना भी आई सोलेमनली डिकलेयर दैट दैट वुड बी माई लॉफुल हसबेंड, है ना।

साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध के शोभा उच्चते उच्ची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा

बृहस्पति कई कोड़ पुजारी कई कोड़ाचार विहारी कई कोड़ भय तीर्थवासी कई कोड़ बंड पर मैं उदासी कई कोड़ वेद के स्रोता है कई कोड़ विश्र होता है कई कोड़ आत्म ध्यान तारा है कई कोड़ कव का विचार है कई कोड़ नव तन नाम त्या वह नानक करते गंत न पावे कई कोड़ भय अभिमानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ कृपण कठोर कई कोड़ा विघा तुमने कोर कई कोड़ पर ध्रुव कुहिर है कई कोड़ पर दुख न करे कई कुड़माय शरमाए कई कुड़ पर दे शरमाए जज लाभ तित लगना नान करते की जानी करता रचना कई कुड़ से जति जोगी कई कुड़ राज रस भोगी कई कुड़ पंखी बह सर्व पाए कई कुड़ पात्र बिरखण बजाए कई कुड़ पौन पाणी बह संतरे कई कुड़ दे सुमंडल कई कुड़ सचे सुरण खेतरे कई कुड़ देव दान इंद्र सिर छात्रे सगल समग्रे अपने सुतारे नानक जिस जिस पावै तिस दिन सतारे कई कुड़ राजस्थान सातक कई कुड़ वेद प्राण समृत अरसासत कई कुड़ कीर्तन समोदय कई कुड़ नाना प्रकार जन कई कुड़ के चर जीवै कई कुड़ गिरी मेर सुनती वै कई कुड़ जक नर पिशाच कई कुड़ भूत प्रय शुक्र मेरे गाच सब ते नेरै सब हूं ते दूर नानक आप अल्प त्रै भरपूर कई कुड़ पाताल के वासी कई कुड़ नर सुनवासी कई कुड़ जन्मै जीव मरै कई कुड़ भोजन नहीं फिरै कई कुड़ बैठती गाए कई कुड़ कालत गवाए कई कुड़ केतन मंत कई कुड़ माय मैं चिंत जह जय भाणा तै तै राखे नानक सब की प्रभु के आत कई कुड़ भय बैरागे राम नाम संगत लागे कई कुड़ प्रभु को हो जंत आतो मैं पारू नहंत कई कुड़ दर्शन प्रभु प्यास तिन को मिले प्रभु विनाश कई कुड़ मंगे सत्संग पारू तिन लागा रंग जिनको आप सो प्रसन्न नानक तिजन सदा धन धन कई कुड़ खाणी रखंड कई कुड़ आकाश ब्रह्मांड कई कोड़ हो अवतार कई जुगत किनो विस्तार कई बार पुसर पासार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोड़ किन भात प्राप्त हो प्रमा समाता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु सवाय कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो त्या तुम प्रकाश कई कोड़ दात के वेत सदा निहारे को नेत्र कई कोड़ नाम रस भी मुर पे सदी जीव कई कोड़ नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारा पे का विस्तार जात पावे सिस्टो पाए अपने पाने लय समाए तुम ते पे नहीं किश होए अपन सु सब्जेक्ट ब्रोए जाको प्रभ जीव आ बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नान सिष्ट का जेता जी जंत्र सप्ता के आत दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस्ता जबर कहाँ को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जुग जा के सब हाथ अंतर बार जानो साध गुण निधान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूरा दयाल सब उपरोक्त कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो बे आप बाल जीन बो भांत जो जुर से उस तसे त्यात जिस पावे तिसलै मिलाए भगत करे हर के उन गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करना नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए शिव को सेवा बने आयु कंबूज परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा कै मन बस्या निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर अंदन पूजे गुर कै पैर है लोक सुखी है पर लोक सुहेले नान कर प्रभापे मेले साह संग मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ दे कह करो उधार अमृत बचन रखे गुण गाओ प्राण तन कह सुहाओ आठ पैर प्रपे को नेरा मिटे गहन बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो हलत पलत दोए लियो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा ते साज प्रीखिया मन तन नाम जपो ले बुलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो वा पारी दरगा ने बह खेप तुम्हारी एक टेक रखो मन माए नानक बोर न आवै जाए तिस्ते दूर कां को जाए उबरे रख नार ते आए निरपो जपे सकल पो मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन हुआ सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिरे उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमर जाकी दृष्टा दर्शन पे उदर श्रेष्ठ जन कम जाकी अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावद काल अमर पय अमरा पद पाया सा संग नान कर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बिनास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संसंगंत प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दिष्टाय नौने दमर्थ प्रभ का नाम देई मैं इसका विश्राम सुन समाधन अंत नाद कह न जाई चर्ज बिस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अंत कट कट व्याप रहा भगवंत धरन माए आकाश प्याल सब लोग पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आगे तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माए चार कुण दैद सहस माए तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नारायण सुख पाओ वेद प्राण समृत मैं देख सत्य सूर निकत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोल आप डोल न कबूं डोल सर्व करा करके लैके हिल मोल न पाइया गुणा अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धारियो स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद भरम का नास नानक दिन मैं ए विशास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनू सो बचन सर व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कैत जो जो होए सोई सुख मान करन करावना हर प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देव सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्राप्त सगल युत पा तिस भावे तक करे विस्तार तिस भावे तक अंकार अंकला लखी न जाय जिस भावे तिस लय मिलाए कम निकट कम कही है दूरा पे आप भरपूर अंतर गज साहब जनाए नान तिस जन आप बुझाए सरपूत आप वरतारा सर नैना पे कुनारा सगल समगरी जा का तना अपन जसा पी सुनावन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्तो रह जो किश कहना सो आपे कह आगे आवे आगे जाए नान जा भावे तलै समाए इस ते सुनाई बुरा उरे कौ किने किश कराया भला कर तू तद नी की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब चा साच ओत बोत अपन संगराच ताकि गत मित कही ना जाए दूसरो दिन सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक एहो जान जो जान तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जनावन कै सुहाव जन कै संग चिताया आवै नाऊ
आप मुक्त मुक्त करै संसार।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निटकर पेक साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतरिकुतरा चिंद आसन त्यागो तरंग संजन की धूर मन मांगा आप छोड़ बेनती करो साध सागन साध संग अगन सागर तरहो हर तन के परले हो पंडार नान गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहजनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधार हो जी योगन गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारम बार नानक जी का आधार तुम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रत्न सुमत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा रंग जय जय शब्द नाहद वाज सुन सुनंद करे प्रभ गाज जय प्रगटे गोपाल मात के माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर पै सब रेण अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूनोई सेव की सेव आल जंजाल बिकार तेरा ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद या प्रभ धारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोच निधान सर्व शादा की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब तीज पाई स्थान बौर न हो वै अमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जसै प्राप्त होए खेम शांत रिदनव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मल सकते उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै

कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास पर तुम्हें त्यावो चरण कमल से लाग्या प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक कोट एक को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टि मां सुख होए रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिप्तान्य पूरन पुरख नहीं डुलान्य सो पर परे प्रेम रस रंग उपजय चाहो सार का संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रदास अंधिल विलाग बड़भागी जपया प्रसोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुगत जन पया जन मरण दुख भरम गया इच्छ पुन्नी श्रद्धा सा पूरी रव रहया सा संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरै जे काल न भन सो क्यों विसरै जे किया जन सो क्यों विसरै जी सब किस दिया सो क्यों विसरै जे जीवन जिया सो क्यों विसरै जगन में राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों विसरै जे विस्ते कड है जन्म जन्म का टूटा गंड है गुर पूरे तत हे बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एक काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो रह नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निर्नाम बूढ़े जाल पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उप जी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रोपेख दर्द सुख होए मन विषय सा चरण तोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को उपावे संग।

किन्नों विस्तार, पाप पुनता पई कहावत, कौ नरक को सुरंग बिछावत। आज डाल माया जंजालों में मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान। अपन खेल आप कर देखा है, खेल सकोचे तो नानक एक है। जय अवगत भगत ने आप, जय पसर पसार संत प्रताप। दुहु पाक का आपे तनीन की शोभा बनी, आपे को तकरे नन चोज, आपे रस को गनिर जोग। जिस पावे तिस अपन नहीं लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार सागंत तोले, ज्यों बुलाऊं त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार, नानक एक को पसरिया दूजा के अधिष्ट अष्टपति। आप कथे आप सुनने हार, आपे का विस्तार। जहाँ तिस पावे त श्रेष्ठ पाए, अपने भाणे ले समाए। तुम ते पिने किछ होए, अपन सूर सब जगत पर होए। जाको प्रभु जी आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो सुंदर सीता का बेटा, नानक सर्व श्रेष्ठ का जेता। जी जंतर सब ताके हाथ, दीन दयाल नाश को नाश। जिस राख्या जिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसार है। तिस सजवर कहाँ को जाए, सबसे देख निरंजन राय। जी की जुग जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान जयंत पार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब पर हो कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी लियो व्याप। प्रत पाले जीव को पान, जो जो रच किसे त्याग। जिस पावे किस लय मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर, मान्या कर हार, नानक जानिया जन लग।

0: जन नानक गुरपार ब्रह्म
1: गुरु रूप सात संगत जी हो सतगुरु जी दी अपार रहमत बख्शिश होई साडे सारयां ते महाराज जी ने कृपा करके अपने पावन चरणा विच बैठन दा सुभाग समा सानू बख्शिश कीता है। करोड़ां वरी धन्नवाद करिए सतगुरु जी दा, करोड़ां वरी जिन्हां ने मेहर करके कलयुग के इस भयानक समय में सानू सतसंग दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां, अपने चरणा विच बैठन दा सुभाग समा बख्शिश कीता। सतगुरां दा कोटान कोट शुक्र है, धन्नवाद है। अज गुरपुरब भी है, सारे संसार च मनाया जा रहा है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा, पहला प्रकाश सचखंड श्री हरिमंदर साहब। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने साढ़े जीवन के कल्याण वास्ते, साढ़े भले वास्ते, उस समय में जो कोई पेपर का कोई बहुता इंतजाम नहीं, स्याही का इंतजाम नहीं, महाराज जी ने किदां पहला पोथियां गुरबाणी नूं एक कागज उत्ते लैके आना, फिर बाबा बुढ़ा जी नूं पहले ग्रंथी थाप के सतगुरों का प्रकाश करना। तो अज प्रकाश दिहाड़ा है सतगुरु जी का। अब बेनती करिए महाराज साढ़े हिरदे विच भी प्रकाश बख्शिश करो, गुरबाणी इस जग में चानन करम वसै मन है, करम बख्शिश नाल मन विच वसदी है। तो आओ सारे रल के कीर्तन करिए। मैं फिर आप जी के चरणा च सिर रख के बेनती करांगा, चरणा च सिर रख के जिन्ना अगे अगे हो के बह सकते अगे अगे बैठो। भाई जुझार सिंह अगे अगे नेड़े नेड़े आके बैठो, उठ के गांव उठो, मेरी धियां नेड़े नेड़े आ जाओ। सारे रल के कीर्तन करना है। सामने स्क्रीन लगी है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का फायदा लईए। प्रोजैक्टर के उत्ते नाल नाल शब्द वीर जी कढ़णगे, अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोलै सो मुख अमृत पा। जिहड़ा जिहड़ा बोलेगा सतगुरु जी दे बचन पढ़ के देखो, उहदे मुख विच अमृत पएगा। जिहड़ा गुरबाणी नूं गाएगा, जिहड़ा गुरबाणी नूं बोलेगा, उहदे मुख च अमृत पएगा। तो सारियां मेरियां जिन्नियां धीआं बैठियां, मेरे वीर बैठे हो, सारे रल के कीर्तन करिए, सारिआं ने बोलण दी कृपालता करनी जी।